Jadi ngeran dagawan kije. विश्व गुरु महामान्य स्वासी स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की श्री देवेश्वर महादेव की हिंदू धर्म स्मरण श्री स्वामी माधवानंद जी सदगुरुदेव की ईश्वर गुरु मंडलेश्वर परावन श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: श्रीदीप ना भगवान की जय, श्रीमदानंद जी भगवान की जय।
1: थैंक यू एंड टुमारो विल बी मोर ओके
2: सीधा सीधा další
1: प्लीज कम।
3: There's a very powerful prayer which we hardly ever sing.
2: Je jedna velice silná modlitba, kterou málo kdy zpíváme.
3: Shri Satguru Bhagavan ki arati. Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai.

0: भगवान की जय। श्री माता वनंद होली गुरु जी श्री सत्ता गुरुदेव श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।

0: Come a little back. Thoda. Mere piche aao. Ya mere paas mein. Ab dono ek saath saath reho beta. Aur mask nikal do. Sight karo. Slow. Thank you.
1: Shri Deep Nan Bhagwan ki jai. Devi Shramadev ki jai.
0: Thoda dur hai.
2: Hindi Gam Samrat Satguru Swami Madhvanji Bhagwan ki jai.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: Without गुरु वी कैन नॉट नो ब्रह्मा विष्णु महेश. एक्चुअली गुरु इज नॉट ओनली ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु इज ऑल्सो पार ब्रह्म परमेश्वर. ओम.

वंदे माता पार्वती सहित शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सैड, माई गॉड इज माई गुरु.

0: पूज्यपाद अनंत शिव भूषित परिवचकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

गोचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

So there is something, some reason. That's why I came here. And in the same time, they were discussing, and Brahma appeared. And Brahma said, "Oh, why you are debating? There was already fixed. So you're supposed to marry." And Sankara would accept. Okay, we'll do the Gandharva Vivaha then. So Gandharva Vivaha, there are the variety of the Vivaha. The marriage is normally it explains 8 types of marriage in different scripture. The aiming is the Brahma Vivaha. Is the Brahma Vivaha is you go to the girl's father's house and you ask and father's comes and they do the swayambar, kanyadan. So that is the Brahma Vivaha. And similarly, Kumbha Vivaha, Gandharva Vivaha, and Naga Vivaha. So there is a variety of the marriage types. And Sankachur wants to do the Gandharva Vivaha. Gandharva Vivaha is dancing and also doing the attraction, but not in a big volume. So it's like love marriage in nowadays. So he wanted to do that. And she accepted. They get married. And after marriage, both you were yogi. So when you have got the same energy, both you are yogi, there will be no fight. Evening, oh, I want to do meditation. And he will not say, oh, no, this time to for dinner. Or she will not say, oh, no, this is time dinner. Because both are meditative. They sit together and meditate jointly. That's why it is saying that whatever you do for spirituality, it's better to do together. So there will not be conflict. So you meditate together, you yoga, doing yoga. So sometimes you do partner yoga as well. And sometimes you meditate together, you go retreat, pilgrimage together, and nice bond. And you living for a purpose, not for physically or not for just maintaining your housewife or house life. So you're going together. So Sankachur and Tulasi also married now in this point. Sankachur ko bardan tha ki Sankachur aap bahut balshali hai, to aapko kya hoga ki ek Tulasi ke saath mein vivah hoga. Tulasi bahut sare dharma yogini hogi aur Tulasi bahut hi धर्मात्मा रहेगी तो आपके लिए भी बहुत सुहाग देने वाली रहेगी और पत्नी परायण और पति परायण होकर आप दोनों को शक्ति बहुत बढ़ेगा. तो ब्रह्मा जी का ये आशीर्वाद था. इसलिए क्या है कि पति पत्नी का जो होता है, जो लिखा होता है वही रहता है. इसलिए जो विवाह क्या है कि स्वर्ग में इसको फैसला हो जाता है और धरती में आके ये मनाते हैं. तो इसलिए क्या है कि शंखचूड़ भी वो पता करके ब्रह्मा के आशीर्वाद लेकर वो चला गया. गया तुलसी ध्यानस्थ थी. जब तुलसी ध्यान करके रही थी तो शंखचूड़ गया और शंखचूड़ ने परीक्षा किया तुलसी को. तुलसी, मैं सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, आइए विवाह कर लीजिए. लेकिन तुलसी ने भी परीक्षा किया, मैं ऐसे ही आकर्षित होने वाला पुरुष के साथ में नहीं रहूँगा. क्योंकि पुरुष पहले क्या है कि बहुत नरम होते हैं, आकर्षित होते हैं लड़की के, बाद में छोड़ देते हैं. इसलिए मैं तो कभी आकर्षित नहीं होता हूँ. तो उसने बोला, तो फिर शंखचूड़ ने, मेरे लिए भी ऐसा लड़की नहीं चाहिए, पहले आकर्षण होती है बाद में छोड़ देती है. तो इसलिए वो दोनों को बात विवाद हो रहा था. इसी समय में ब्रह्मा जी आ गए. ब्रह्मा जी ने बोला कि आप दोनों को पहले ही निर्धारित है विवाह, इसलिए आप विवाह कर लीजिए. तो दोनों ने क्या किया कि गंधर्व विवाह कर लिया और सुख शैल में रहे. और जो तुलसी और शंखचूड़ नाम का दानव का विवाह हो गया और धूमधाम साथ विवाह होने के बाद में वो लोग आपस में बैठते रहे. और तुलसी योगिनी धर्मपारायण थी, इस कारण से उसका जो दानव का बल भी बहुत बढ़ गया. एक तो पति पत्नी व्रता का धर्म, दूसरा क्या है कि उसके साथ में कृष्ण का कवच था. दोनों करके बहुत बलशाली दानव हो गया. तो उसने धीरे धीरे धीरे तीनों लोक में शासन करने लगा. देवता, दानव सब लोग क्या है कि त्राहिमाम होने लगे. तो उसका कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, क्योंकि वो धार्मिक दानव था. लेकिन देवता लोक को स्वर्ग से उसने खेदा और देवता लोग दुखी थे, बाकी सब लोग सुखी थे. इसीलिए क्या है कि पति पत्नी बीच को अगर संबंध अच्छा हो जाता है तो दुनिया में कोई भी नहीं हिला सकते हैं. इसीलिए क्या है कि पहले पति पत्नी को सुंदरता किस में रहता है, तो उनको एक आपस के संबंध में है. जब संबंध बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा. इसीलिए बोलते हैं कि पति अभी के जमाने में तो कैसा है कि पहले शादी के समय लेकर आओ, तो शादी के पहले साल क्या होता है कि पति थोड़ा बोलता रहता है, पत्नी सुनती रहती है. और शादी के दूसरा साल क्या होता है, पत्नी का पावर बढ़ जाता है और पत्नी बोलती रहती है और पति सुनता रहता है. फिर तीसरा साल क्या होता है, पति पत्नी लड़ाई करते हैं और पड़ोसी सुनते रहता है.
इसीलिए क्या है कि अभी के समाज में तो पति पत्नी बीच बहुत समस्या है कि एक दूसरे में शंका भेदभाव बहुत है, लेकिन हमारे शास्त्र बतलाता है अगर पत्नी और पति पति परायण और पति व्रता पत्नी व्रता होकर रहे तो उसमें से ज्यादा शक्ति किसी चीज में नहीं है। पत्नी व्रता का शक्ति पति व्रता धर्म का शक्ति बहुत तेजस्वी होता है। शंखचूड़ को ऐसे ही मिला, इसीलिए ये समाज में ये दुनिया में ये पुराण एक दूसरे को गुण को दोष को स्वीकार करके ही अपने दाम्पत्य जीवन चलाना चाहिए। सो देयर वाज अ पर्सन, ओ गॉड प्लीज गिव मी परफेक्ट वाइफ, सो परफेक्ट ब्यूटीफुल परफेक्ट एंड रिच इंटेलेक्चुअल, एंड द गॉड सेड वेल आई एम हैप्पी विथ योर मेडिटेशन बट आई कैन नॉट गिव दिस बून फॉर यू एंड दिस सॉर्ट ऑफ गॉड डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। Yeah. So that means whatever you have, the successful marriage is not that perfect husband and perfect. Saying that in successful marriage, you need to fall in love every day, but with the same person, not with different person. So it's a good union, unification between two persons. The forgivers, two forgivers, and he was Krishna's bhakta as well. That's why he did not that much harm, but he's very powerful and he always the god always in problems. And Shankhachur, Tulasi very happy. Their power was very very happy couple and wonderful couple. They always they were the example couple also. So it is saying if husband and wife have got a strong bond, then they can do anything. So, but if there is have got the problem, then other people come and they takes advantage, obviously. So that's why it is saying for the beautiful couple life, you never leak your secrecy bone. So always, so they help each other. So in husband and wife also, when we see that our life is not for to that pleasure, not only for intimacy, not only for the children or family. Both of you came for marriage, for the helping each other for spiritual growth. Happiness. If you understand in that way, definitely she's helping to him and he's helping to her. And this will be very happy marriage life, couple life. In the same way here also Shankhachur and that Tulasi is very happy, but they always torturing the god. The Shankhachur is very brave. No one can destroy. No one can do. Second is Krishna mantra. And third is the patni's, the wife's power. So Weber have got a great love with wife and husband. They have got strength and power, obviously. In nowadays, you can see there is the little bit fraction in society and people are very weak. When they are weak inside, no matter you have a fame, name, property, asset, everything. But if there is a tension in your home, then the people becomes always weak. So if you are successful in a business, maybe in office, very high degree. But if in the when you dominate in your home, that what will happen? There's always fight, then it will be the problem. So that's why it is saying in science also, always maintain the love. The one day that husband, there was a husband and wife told to the husband, always he used to be scared with wife. And he asked one day, they went to see the zoo, animal zoo.

0: that our tradition is Brahmin. Brahmin means who knows the Brahma, who knows the Veda, who is the intellectual person. We love to donate because that dhan, that asset will spread the knowledge to the towards the world. So that's why they donate. Brahman, priest, and then intellectual person. And he came, he arrives on his gate. So he's very adorable and kind and generous demon. And he said, well, I can give you. That's not a problem. That's okay. So, and what would you like to ask? And the poor Brahmin trickfully asks, well, I don't need anything except your Krishna Kavach, he said. Oh, Krishna Kavach? What you need? Who are you? I thought you are asking some rice or some money or some land. You are asking Krishna Kavach. That is my favorite things. He said, well, you already promised that you want to give. If you don't want to give, that's all right. I'm going. You know that. Once you promise and you don't give, what will be the result? And he always wanted to curse or something, obviously. And Shankaracharya is scared. Well, all right. I'm going to give you Krishna Kavach. And he hand over the Krishna Kavach to the Brahman. So his first power was Krishna Kavach. That was meditative power from the Brahma. Then the Vishnu snatched it. So that's why when you don't take that ghee from the straight finger, what you do? Squeeze. So in the same way, the Vishnu also did the trick and snatched the Krishna Kavach. Shankhasur bahut balsali tha. और उसके पति बता सो पत्नी के धर्म से वो बलशाली हो रहा था लेकिन क्या है उसके साथ साथ कृष्ण कवच था और विष्णु ने क्या किया कि कृष्ण कवच छीनने के लिए क्या किया कि उसने एक गरीब ब्राह्मण के भेष धरा गरीब ब्राह्मण के भेष धरने से उसने शंखचूड़ के साथ में जाकर क्या है कि भिक्षा मांगा ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही बोल के मांगा जब भिक्षा मांगा तो क्या है कि शंखचूड़ के साथ में तो असंख्य धन था दौलत था सारे था एक वृद्ध ब्राह्मण के लिए देने के लिए क्या नहीं था उसने अच्छा ठीक है मैं देता हूँ बोला तो ब्राह्मण ने बोला चलो संकल्प तो कर लो पहले तो जब जो कोई भी संकल्प करते हैं तो देना ही पड़ता है नहीं तो उसको श्राप लगता है और उसको क्या है श्राप से और पाप लग जाता है तो ब्राह्मण के देने के लिए उसने संकल्प कर लिया संकल्प करने के बाद में उसने मांगा तो क्या चाहिए वृद्ध ब्राह्मण तो उसने बोला कि मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके पास में जो कृष्ण कवच है वही चाहिए तो वो क्या है कि आश्चर्यचकित हो गया अरे ऐसा वृद्ध ब्राह्मण मैंने सोचा सोच के संकल्प किया था ये तो झूठे है ये तो जाली है तो वही के भगवान के ये माया के खेल है चलो संकल्प तो कर लिया है अब बोलने के बाद में देना ही पड़ेगा तो उसने क्या है कि दे दिया तो कृष्ण कवच तो वो दानव का आधा बल कृष्ण कवच में था वो निकल गया जय बोलिए शिव भोले बाबा की जय सो नाउ वी विल हैव वन भजन एंड वी विल गो अहेड सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वी कीप डूइंग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स अ समराइजिंग वी ऑलरेडी फिनिश 5 चैप्टर्स व्हेन वी कम अराइव हियर हरि ओम
1: ओम बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री देव पुरुष महादेवा की जय श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर पर श्री स्वामी

when we break that shaligram, inside there is a chakras, and still you can yourself in your life, you can go and prove yourself. And it is saying that if you take bath in Gandaki, whatever the water is coming from the shaligram, you will have the many, many lives punya. तो आपके लिए क्या है, बहुत पुण्य को प्रदायक होगा अगर काली गंडकी में जाके आप स्नान करोगे तो. इसलिए दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी एंड प्रूव्ड स्टोरी, प्रूवन स्टोरी, एंड नॉट ओनली दैट सेइंग, नॉट स्टोरी, नॉट दैट इज ओनली कंजर्वेटिव और समबडी सेज इन बुक. यू कैन गो एंड एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन एंड और यू कैन फाइंड आउट हियर एज वेल. सो दैट्स व्हाई इन नेपाल द काली गंडकी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिमेज गोज. And at the that's origination of the Kali Gandaki is Muktinath, and in the Muktinath you can see the still the fire, continuous fire. It's not man-made fire; it's a holy fire. You can see there the fire is flaming all the time. It's like a volcano, but it's not volcano because of some the chemical. The fire is coming there continuously, and it is saying the fire of Brahma, Vishnu, Mahesh. And so in the river you can see the shaligram. And wherever in around the world it is supplying now, that is from the Kali Gandaki. And Kali Gandaki is Tulasi's physical body. That is after she loses her that integrity, she loses her patibrata dharma. So that Kali Gandaki river is the body of the Tulasi. And when she get the blessings, Tulasi, and from that day, Tulasi and Vishnu is together. And Tulasi went to Vaikuntha. And she is worshipping everywhere around the world. You also love Tulasi, isn't it? Basil. The basil hops in Europe, in America, in Australia, any countries nowadays. The basil have got different species. But if you find the original one, that is a wonderful. And newly invented here, there is in India, there is one resource center called National Center of Biological Science that did the experiment. That short form is NCBS. So, and that technology, that laboratory tested, and Tulasi have got such a power, it has got antifungal, antibiotic, or anti-cancer elements in it. That's why it's already herbs, popular herbs. And later on, that Tulasi is acceptable, and when you die also, the Tulasi is very important. And in everyone's house, there is Tulasi in Hindu's house, in Sanatani's house. And the Tulasi is the continuously it provide you oxygen. Jai boliye Narayan Bhagwan ki. Jai boliye Tulasi Mata ki. Jai namastu Tulasi Kalyani. Namo Vishnu Priye Suve. Namo Moksha Prade Devi. Navasampada Pradayike. Namastu Tulasi Devi. Namo Vishnu Priye Suve. So it is the beloved ones of Vishnu now. So that's why we salute the Tulasi. From that time, continuously, she is serving this universe. Many, she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if your quarantine, if your custom allow you. So take some Tulasi seed with you, if you haven't already done this. And Tulasi is the wonderful, it need to go everywhere. And this is for the human welfare. Everyone deserves to take advantage from this divine herbs, Tulasi. That's why Tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And Tulasi is offering to Shaligram. And Shaligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Shaligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is, what is the Shaligram? So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the Tulasi, it is saying that as a Vishnu. That's why many people, they keep at least five Shaligrams. So five Shaligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a five Shaligrams. So everyone can keep in Shaligram and Tulasi. It has got medicinal benefits, herbs. And also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first? Then they supply, first is oxygen mask.
So nature give you oxygen marks in your home. When you plant tulasi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free that tulasi is oxygen. And that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial tulasi. If you put in tea, there is tulsi tea as well. If you wear tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always 2 pieces of tulasi, that removes the bacteria and helps you. The tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality, or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and tulasi's mahima. And Jai Bole Siyavara Ramachandra Ki, Jai Vishnu Bhagwan Ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में पति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया पाँव धो लिया घर में लेकर गया खाना दे दिया रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा जय बोलिए भगवान नारायण की जय तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है ना तो भाई नहीं तो कोई जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है लेकिन दोनों दुश्मन है तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है अच्छा नहीं है तो ये शत्रु के रहता होता है इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा माफ दीजिए तो तुलसी ने क्या किया श्राप कर दिया श्राप दे दिया श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया पाषाण होके रहना पड़े दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन तो आप पत्थर होकर रहना पड़े तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिवजी आ गए और भोले भाले शिवजी ने क्या है तुलसी को समझाया तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है लेकिन मन नहीं हो सकता है आपको मन नहीं था आपको मन से नहीं किया है इसलिए क्षम्य है इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं उसका मन नहीं रहता है लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है तो मन को हम माना जाता है स्वीकार कर लेते हैं तो फिर
भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया। वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है अभी, सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था। और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र, सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का। इसीलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिव जी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए। चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं। और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूर दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूर दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

की जय। बोलिए राम नारायण की जय। सो स्टिल इट मीन्स इफ यू गो टू नेपाल डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व द काली गंडकी एंड सालीग्राम एंड दैट सालीग्राम इज नाउ इन म्यूजियम ऑफ द लंडन एंड म्यूजियम इन ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी कंट्रीज दे आर द एक्सप्लोरिंग एंड इनोवेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड इट इज सेइंग दैट वेन द ओशन वॉज मूविंग दैट टाइम द प्लेट ऑफ दिस अर्थ

कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये श्री प्रणव जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में, तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसे ही कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था, ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए बहुत दुखी बन गए और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ शिव जी ने बताया और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक इन विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड द टाइम द वृंदा सो द विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो he faint he lost there she was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there and Brinda surprised who is this if this is my husband he cannot be faint he should not be unconscious he my husband is used to and then before coming Brinda before saying to Brinda Vishnu disappeared and ran away from there so and he was waiting for the second chance And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived. I'm very tired with the Mahadev fight. Can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, my Swami, come here. I'll offer you my lord. I'm waiting for you. You must be tired. I'll give some good massage. Come here. And she gave good fruits and everything and she did the arati for her husband and everything done and that Vishnu did his notorious things, he performs that and the Brinda overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev and Vishnu is in Raslila with Brinda in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu send message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted, you don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda course, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth. So that you cannot move anywhere else. Because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. So, फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्थानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है. लेकिन स्वस्थानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया.

पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तू जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े, तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे। फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़ेगा मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी। और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए। और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए। इसलिए चार श्राप था, तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं। तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग्स देयर, फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन अ स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास। सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास, द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर एवरीवेयर वी यूज द कुश ग्रास। एज वी मेंशन अर्लियर सेशन इज कुश ग्रास इज ऑल्सो मेडिसिनली इज थेरापेटिकली वेरी यूजफुल एंड वेरी वंडरफुल हर्ब्स। And similarly, she calls the grass bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isliye is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur kya hai ki hum jo people ko ruk, saligram ko, tulasi ko, kush grass ko, vishnu ke roop pe istemal karte hain. Ye आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है। और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है। तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी बिस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है। इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा, तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा। सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष के लिए आ गए, एंड देन He started to remain Tulasi, people, Saligram and Kush grass. So nowadays if you have to pray Vishnu, normally you go to and worship. And it is saying Vishnu, Tulasi, people is a indicator of Vishnu. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated way under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility, and that is the because the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। दैट पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, पीपल वुड्स, तुलसी वुड्स, कुश ग्रास, तुलसी वुड। सो व्हेन यू डेथ डेथ आल्सो इन सिमेट्री, इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल कुश तुलसी, इट्स एज लाइक it will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai, ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur tulasi ke lakdi saath mein rakhlo aur chita mein koi bhi, kisi ka bhi chita,
पीपल का लकड़ी से, तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉन होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए समिदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड। सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें, सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटिफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटिफुल। सो इट्स एज नो मैटर वट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स। सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कुश ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कुश ग्रास इज वंडरफुल। That's why our saint and Rishi Munis, they ate that every prayer. You need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that, if you see that in the kalasa, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap, so tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan and Australia and some other country, Canada, nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye peepal ke rukh mein dhyan karne se, peepal ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashwasan mein aashwasan to yahi hai. और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में, उनको जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन में ही, उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसीलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit.
that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the

0: ओम बोले श्री श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुष महादेव की जय। श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स द सुस्तानी पुराण ऑल्सो द सेम थिंग एज आई मेंशन बिफोर इन इन टीचेस अस हाउ वी कैन रिमेन ऑल द टाइम इन अ डीप स्पिरिचुअल वैल्यू द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी केम इन दिस यूनिवर्स दैट फॉर अ शॉर्ट लाइफ सो इट इज सेइंग दैट इन स्काई व्हाट एवर लाइट गिव्स बाय द स्टार that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant that change your vision, visuality, तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है, तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है। वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए। फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He is asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time, that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya.

मामेकम शरणम ब्रज. सो भागवत गीता चैप्टर 18 वर्सेस 66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सो भागवत गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा. इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर. इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी. That's why it is saying that it increase faith also. And for the faith, that many stories is comes, many things comes. So that's why there is theories. One is you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, Yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvaka theory is that said. But in spirituality it says like there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is it's really good. So that's why it says like trust and follow the Shiva Purans. It says like from the Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Triguna, proton, neutron and electron, they merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, aaj ke liye, aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था. ऐसे करके जालंधर, जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया. पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया. इसलिए पति बीच, पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड़ दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है. शिव पुराण के अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिवपुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

ॐ श्री महादेवा की जय। गौरीदेव देव पुरुष भगवान की जय। राधे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी।

धर्म सम्राट स्वामी महादेवानंद जी सद्गुरुदेवा की जय। विश्व गुरु जी परहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की।

0: Panchamatya hai Rudra Shop.
1: It's there. You have it?
2: The other one you have somewhere. You can put one just walk around. You can put it on the.
1: So it takes the Prajwalan.
0: Ashman.
1: ओके वी आर स्टार्टिंग श्रीदीप नारायण भगवान की जय पहले आचमन या पवित्र पवित्र
0: जय आचमन ओम केशवाय नमः ओम केशवम मां पुरातु ओम नारायणाय नमः नारायणम मां पुरातु ओम माधवाय नमः माधवम मां पुरातु हस्तो वृक्षारिषे केशवाय गोविंदाय नमो नमः अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवचो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिवर्चः सूर्यः स्वाहा भगवान को दीपक दिखा कर
1: कुछ करना है आचमन वगैरह सब हो गया
0: ले लीजिए आचमन वगैरह हो गया उसी आसन से तो यहाँ आवश्यकता नहीं अभी पूजन से उठ गया है हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अग्नि देवता का आह्वान करना मतलब प्रणाम करना है ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहम उपप्रवेदेवां आसादयादिया भूर्भुवस्वः अग्नये नमः ध्यानं देहार्थे पुष्पम् अक्षतां च समर्पयामि नमस्करोमि कुंड के बाहर ही इसको चढ़ाई बीच वाली जो सीढ़ी है भूर्भुवस्वः अग्नये नमः ध्यानं देहार्थे अक्षतां पुष्पम् समर्पयामि नमस्करोमि थोड़ा सा जल से अभिसिंचन कर दीजिए कुंड के अंदर थोड़ा सा जल से ओम शुद्ध वाला सर्वशुद्ध वालो मणिबालस्ताश्विन श्वेता श्वेताक्ष वर्ण श्रेरुद्राय पशुदे प्रणाजामा अवलिप्ता रुद्र अनुपा अपार जन्या जो ये लोग बैठे हुए हैं इन सबके ऊपर थोड़ा सा थोड़ा जल और जो पूजन की जो सामग्री है इसमें थोड़ा थोड़ा जल पुष्प से लेकर के सभी जगह चढ़ा दीजिए मुखम्य सर्वदेवानां भविभुक्त विभुक्तदा पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने इस श्लोक में बताया गया है कि अग्नि देवता कैसे हैं चत्वारि श्रृंगा उनके जो अग्नि देव हैं उसमें उनके चार सिंग हैं त्रयो अस्य पादा उनके तीन पैर हैं
1: इट इज सेड इन द शास्त्रस दैट ही हैज चार क्या है
0: पैर चार सिंग हैं उनके
1: सिंग या सिर
0: String, sir.
1: For not string, it's a Sanskrit word for heads. So it is said in this mantra that fire god has four heads.
0: Trayo asya pada, teen pair hain unke.
1: Three legs.
0: Dve shirse, do jo hain unke sar hain.
1: To char kya the pehle?
0: Sting nahi hote hain, sting.
1: Okay, four horns, three. Legs and two heads.
0: Saat haath hai unke.
1: Seven hands.
0: Aur saat hi jihvaen hain.
1: And seven tongues.
0: Jisse wo havan grahan karte hain.
1: With which he receives what we offer him.
0: Wo Mahadev ke bahut hi zyada anant priy hain.
1: And he is very loved by Mahadev, Shivji.
0: ऐसे जो अग्नि देव हैं उनको हम प्रणाम करते हैं
1: एंड टू दैट अग्नि देव टू दैट फायर लॉर्ड वी मेक प्रणाम
0: और वो हमारे जो हम भी हवन कर रहे हैं तो उसमें जो गलतियां हुई हो गलतियां हो उन्हें क्षमा कर हमें हम जो भी प्राप्त हुई जो हमारी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करें
1: एंड वी आर वी आर
0: प्रेइंग टू पालन में मार्गदर्शन दें
1: वी आर प्रेइंग टू अग्नि देव टू फायर लॉर्ड दैट व्हाटएवर mistakes in chanting or in offering we will do in this yagya we're asking for forgiveness and whatever we can with our shakti bhakti vairagya whatever we are offering please accept it and fulfill all our wishes which we asked you for
0: जो पांच तत्व हैं उन पांच तत्वों से हम सारी चीजें ले रहे हैं जैसे वायु है तो वायु से हम सांस ले रहे हैं जल से जल ले रहे हैं
1: we are taking something from the air wind we are taking breathing from water we are drinking water
0: तो जो पांच तत्व हैं उन सभी पांच तत्वों को प्रणाम करके उन सभी को ये निवेदित है
1: and whatever we are offering we are also offering them
0: आगे प्रारंभ करते हैं हवन की प्रक्रिया थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के ध्यान करना है.
1: Now we are doing dhyana, we are meditating to all the nine graha, nine planets.
0: Planets.
1: Put it back and let it be, later we'll clean up the mess.
0: Because Bhagwan ke do putra hain, dharma aur adharma. Bhagwan ke dharma samne taraf rehte hain aur adharma peeche rehte hain.
1: There are two sons of God, one is Dharma and one is Adharma. Dharma is in front and Adharma is in the back.
0: To dono ko aahuti milti hai, jo agni ke andar jo aahuti jati hai wo dharm lete hain, aur adharm ko jo punya ke bahar jati hai wo adharm.
1: So the thing which is going in the fire is for Dharma, and those which is just falling out is going to Adharma, so that both sons can fulfill that.
0: Hamara prayas ye rahe ki hum andar hi dalein.
1: And we should try that it goes more inside, but that it goes for Dharma and less for Adharma. But if it goes out, it's okay.
0: ओम गुरुवो स्वाहा गणेशाय
1: स्वाहा.
0: एक कटोरी में जल लेकर के सामने रख लीजिए आप. वहीं से बैठे बैठे द्रव्य दक्षिणा इसलिए हम चढ़ाते हैं, कदाचित जैसे जो हम सामग्री लेकर के आते हैं उसमें जो दोष हो अथवा उसके अतिरिक्त जो भगवान को प्रिय हो, वह उससे उसकी पूर्ति हो जाती.
1: The reason why we offer dakshina or money is because if we couldn't find something or there was some shortage in any type of samagri offerings or things that we bought, then that covers that in that way.
0: Because in the olden times,
1: the way of dakshina used to be any type of metal like gold and silver, because that was pure, but nowadays we don't have that, so we use money. I mean, we have it, but we don't want
0: to. थोड़ा सा अक्षत लेकर के जो भी आपने देवी देवताओं को बुलाया है उनसे प्रार्थना करने हैं. आपके आवाहन पूजन में हमसे जो गलती हुई हो, जो कम अथवा ज्यादा जो सामग्री चढ़ गई हो, उन्हें क्षमा करके हमारे जो गुरु जी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, और हमारे जो भी विश्व में जो भी हमारे शिष्य इत्यादि हैं उनको उत्तर उत्तर वृद्धि देने की कृपा करें. इनको सबको समझा दीजिए.
1: Now, whatever we chanted, or if we did any mistakes, we will ask for forgiveness from Gurudev, from Fire God, from Shivji, from everyone, and we will pray that all the world is remaining in peace and unity, good health for Swamiji, and whichever wish you ask for in your inner minds when taking the Sankalpa, that they come true. We are going to pray for that. Papoham papa karma ham papatma papatma papa samavam drai mam parvati natha sarva papa haro hara mantra hinam kriya hinam bhakti hinam sureshwaram yato jitamaya deva paripurnam tadastume aparanam na janami tavarjanam pujam chaiva na janami kshamyatam parameshwaram
0: yantu deva gana sarve pujam adaya mamakim यत्र गच्छ उदासना यत्र ब्रह्मादयः सर्वे तत्र गच्छ उदासना पूर्वस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः.